चला जाऊया जाऊया वाडी औदुंबर, चला पाहुया पाहुया दत्त दिगंबर। तेथे वाहते वाहते माता कृष्णा माई, तिच्या भेटीला भेटीला पंचगंगा येई। अशा सुंदर संगमावर पाहुया दत्त दिगंबर, चला पाहुया पाहुया दत्त दिगंबर। श्रीपाद वल्लभ वल्लभ नृसिंह सरस्वती, अक्कल कोटी हो कोटी गुरुगाणगापुरी वसती। अमर जाती रावर पाहुया दत्त दिगंबर, चला पाहुया पाहुया दत्त दिगंबर। माथा जटाभार जटाभार काषाय वस्त्रांगी, सर्वांगी विभूती विभूती रुद्रमाला कंठे। शंख चक्र गदाधार

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: कृषि संदेश।

0: के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: हिंदी चित्रपट गीतांच्या कार्यक्रमात आता ऐकूया दो चोर या चित्रपटामधलं मजरू हो सुलतानपुरी यांचं गीत लता मंगेशकर यांच्या आवाजात। गीताला संगीत दिला आहे राहुल देव वर्मन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज और सुकून म्यूजिकल स्टूडियो प्रेजेंट संगीत का असर सुकून का सफर लेकर आ रहे हैं एक संगीत की महफिल। और आज की इस महफिल में सबसे पहला सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं विजय जी माली, इनका किशोर कुमार जी ने गाया हुआ समा है सुहाना सुहाना। 1970 में ये फिल्म आई थी और ये काफी सुपर डुपर हिट सॉन्ग रहा था उस समय का। तो आइए सुनते हैं समा है सुहाना सुहाना।

अश्विनी दामले जी की आवाज़ में आपने अभी अभी सॉन्ग सुना है बेचारा दिल क्या करे। खुशबू फिल्म का ये सॉन्ग था। 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और काफ़ी रोमांटिक ये सॉन्ग। और आशा जी की अदाकारी तो आपको पता ही है कि हर सॉन्ग के ज़रिए, उनके आवाज़ के ज़रिए उनकी अदाकारी को देखने का मौका हमें मिलता है। और हेमा मालिनी जी के ऊपर प्रस्तुत किया गया ये सॉन्ग था। संगीत की महफिल लेकर आए हैं हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आइए हम लोग अगला सॉन्ग सुनते हैं संदीप शिंपी जी की आवाज़ में। सॉन्ग के बोल है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता। प्यार ही प्यार इस फिल्म से ये सॉन्ग ले रहे हैं। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मोहम्मद रफ़ी जी साहब की आवाज़ में काफ़ी रोमांटिक ये सॉन्ग था और उस वक्त हर किसी के जुबा पर ये सॉन्ग हमें सुनने के लिए मिलता था। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं तेरे प्यार में ऐ कविता।

रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, आपकी जिंदगी आपका आवाज, संगीत का असर सुकून का सफर, ऐसे ही बेहतरीन नगमे आपके सामने हर शुक्रवार को लेके आते रहेंगे।

आइए अगला सॉन्ग सुनते हैं हम लोग बड़ी मधुर आवाज में, हिम्मताजी वानखेड़े इनका ये सॉन्ग, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।

और ऐसी ही साधना और तपस्या से ये सारे फनकार की आवाज हमें सुनने के लिए मिलती है। अगर हम लोग देखें तो किशोरदा या मुकेश जी या मोहम्मद रफ़ी जी, इनके नगमे दिल को छू जाते हैं, इनकी आवाज़ दिल को छू जाती है। और ऐसे ही आप भी अगर अपनी आवाज़ कई दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगले पायदान पर हम लोग जो सॉन्ग सुनने जा रहे हैं, अरविंद कपड़े जी का सॉन्ग जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया हुआ है। 1964 में ये फिल्म आई थी और मोहम्मद रफ़ी जी जो लेजेंड सिंगर के नाम से उनको पहचाना जाता है, ऐसे मोहम्मद रफ़ी जी ने यह सॉन्ग गाया था और काफ़ी सुपर डुपर हिट ये सॉन्ग उस वक्त रहा था और काफ़ी रोमांटिक ये सॉन्ग है। ऐसे सॉन्ग को सुनते हम लोग संगीत का असर, सुकून का सफर संगीत की महफिल में। अगला सॉन्ग अरविंद जी की जुबानी।

अगला सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं डॉक्टर ज्योति जी सोनो ने। अब तक हजारों पेशेंटों को ठीक करते हुए उन्होंने पेशेंटों के दिल पर राज किया है। आज रेडियो विश्वास के माध्यम से हथकड़ी फिल्म का ये सॉन्ग लेकर आ रहे हैं। रीना राय जी के ऊपर फिल्म आया हुआ डिस्को स्टेशन डिस्को।

0: कैसा लगा डॉक्टर ज्योति जी का नजराना?
1: बहुत ही बेहतर पेशकश डॉक्टर ज्योति जी ने प्रेजेंट की है, और ऐसे ही आप सुकून के साथ बने रहिए और संगीत का असर, सुकून का सफर सुनते रहिए विश्वास रेडियो पर। तो उम्मीद करता हूं कि ये सॉन्ग आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग अगले पायदान पर चलते हैं और अगले सॉन्ग को सुनते हैं।
2: धंदा आहे, रोजचा कॅश फ्लो आहे, मग घ्या विश्वास बँकेचे अनसिक्युअर्ड बिझनेस लोन व्हाया डेली कलेक्शन। रुपये 5 लाखांपर्यंत कर्ज, मुदत 3 वर्ष आणि रुपये 1 लाखासाठी रोज फक्त 108 रुपये। अधिक माहितीसाठी जवळच्या शाखेला अवश्य भेट द्या किंवा कॉल करा 9130002088। रोज थोडं भरा, व्यवसाय मोठा करा। कॉल करा 91300 208888।

0: लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया।

करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन तीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: दखल लिया। इस खूबसूरत मौके पर राजकुमारी को आप लोगों की दखल अंदाजी हरगिज हरगिज पसंद नहीं।
1: इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
0: सुना तुमने, इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
1: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो इसे।
0: देखती क्या हो, गिरफ्तार कर लो मुझे। सुना नहीं, राजकुमारी कह रही है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, वो मुझे यही रखना चाहती है।
1: क्या
0: इतना प्यार हो गया है मुझसे पहली मुलाकात में? अब तो मेरा जाना बहुत जरूरी है। ये खुशखबरी मैं अपनी माता जी को सुना देना चाहता हूँ कि मैंने अपने लिए बहुत खूबसूरत दुल्हन चुन ली है।
1: बदतमीज।
0: शुक्रिया। अजी सुनिए, वो मेरा पटका आपके पास रह गया है, जरा संभाल के रखिएगा, फिर आके ले जाऊंगा।
1: मारो इसे।

थोड़े ही दिन में वो बंद कली खिल जाएगी। मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी डैडी तुम।

अरे मेरे पास तो ऐसे स्लीपर नहीं थे। ये घर, हमारा घर तो ऐसा नहीं था। ये एक रात में क्या क्या हो गया? वो कह रही थी 4 साल

तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में, तुझको अगर दुनिया का डर तुझ जा मेरी आंखों में।